वसुंधरा बस मावे तुझ होवे पास, साहिब सती हुकमत लै कही बने अरदास, कूड़ कमाणे कूड़ो होवे नानक सिफत विगास।

महाराज जी जो समझाना चाहते ने। नानक गुरु अमरदास महाराज साहब कहते मैं मुकदी गल ये करना चाहता कि सतगुर मिले है, सतगुरु नू मिल के फल पाया जा सकता है परमेश्वर दे मिलाप दा और जन्मा जन्मा दी मल नू उतारन दा, मन नू अपने मूल दे नाल जुड़न दा, जमण मरण दा, आवागवन दा, इन्हां सारियां तो छुटकारा पाउण दा फल, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो छुटकारा पाउण दा फल और नाम दा रस लैण वाला फल, ये सारा कुछ सतगुरु नू मिल के ही होना है। सतगुरु तो बगैर गल नहीं बननी। बिन महाराज कहिंदे आ गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। कई बार जिक्र कीता है कि जे फल मिलदा ते गुरु अमरदास महाराज ने 19 बार यात्रा कर ली पर वो फल नहीं मिलिया। 19 बार यात्रा दा मतलब है 19 साल, ते इधर 12 साल सेवा कीती ते कोई फल रह गया बाकी। सतगुरु नू मिल के 12 साल सेवा कीती ते कोई फल छड्डिया महाराज ने, सारे फल झोली विच पा दिते। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे, वो 12 साल सेवा सतगुरु नू मिल के कीती ते 19 बार यात्रा कल्लियां ही कीती बार। भाई लैणा जी बार दी यात्रा किन्नी बार कर चुके आ, 7 साल गुरु नानक साहब नू मिल के सेवा कीती ते सारे फल पा ले। असी फोकट कर्म छड के, कर्म कांड छड के, वहम भरम छड के सतगुरु कोल आ जाओ, सतगुरु नू मिलो। जदों सतगुरु नू आके मिलोगे फिर तुहानू उत्तम फल मिलेगा, तुहानू नाम दी दात मिलेगी, उस नाम दी दात विच तुहाडी वडियाई होएगी, तुहाडी शोभा होएगी, तुहाडी उस मालक दे दर ते इज्जत बन जाएगी। उत्थे फिर तुहानू वडियाइयां माण सत्कार प्यार मिलेगा। पर किवें मिलेगा? सतगुर मिले है, सतगुरु नू मिल के। असी रोज गुरु दे दर ते आउंदे आ ते आके मत्था टेक के ना जाइए, सतगुरु नू मिल के जाइए, सतगुरु नाल गल्लां करके जाइए। जा रोज पाठ करदे आ बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु बाणी विचो गुरु नू भी मिलिए। ये सतगुरु महाराज समझाओ सानू। जदों सतगुरु नू मिल के असी ये फल पालांगे फिर नाम दे रंग विच रंगिया उस मालक दे दर ते सानू वडियाई माण सत्कार प्यार प्राप्त होएगा। इसलिए अपने मन नू समझाओ, मना तू सतगुरु दे दर ते हुक्मरान बन के ना आ, तू सतगुरु दे दर ते गोला बनन वास्ते आ, सेवक बनन लई आ, निमाणा हो के आ, फिर सारे फल जिन्ने सतगुरु कोल ने वो सारे तेरी झोली विच पा देणगे। असी यह बेनती मन दे तल ते करिए ते गुरु अमरदास महाराज ने जो समझाया वो अपने अपने मन नू समझाइए। नानक

नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किस है जिस दे सो पावे सदा।

दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे

दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वंड सकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिठ कीता।

तो एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती।

तेग बहादुर सिमरै करनो निदावताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तेना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ली कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किसान सुवासा नाल निवाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी।

तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखानु सिखी दान केस दान रत दान विवेक दान विसाहा दान प्रोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सर जी।

पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है, धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, समूह साध संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो, जो जी सके आप जियां

चुक माफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवाना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दोहरा आ गया भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभ को मिल वोच है।

जिन शब्द साधु आया गुरु कृपा ते निर्मल हुआ, जिन विचों हो आप गवाए सेवक सेवा कर है सब तेरी, जिन सब दैसा दुआ

बलिहारी कुतुबस्य आतेरात्मा जाय लख्या रहा जात में जो जोत में जाता कलकला पर पूर्या तू सच्चा साहिब सिसु वाले हो जिनकी तिसो पार।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦੇਨਾ ਦੇਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਕਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋਂ ਗੁਰ ਪਾਸ ਅਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿੰਹ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਓ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਈਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜਿਆ ਵੈ ਸੈਂ ਕੌਂਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨੇ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ
ठाकुर करतल त्रया जन नानक बल बल सद बल जइय तेरा अंतरा परव्रया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर करतल त्रया जन नानक बल बल सद बल जइय तेरा अंतरा परव्रया राग आस महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहें तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव हैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहें तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हरन के अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापहें जपहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सिका जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुग भया तुदे आप विछोड़या आ मिलाया
तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल बिछड़या संयोगी मेल, जिसना तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सदही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम सुमाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ मिन दूजा अवर ना कोई, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े भाईले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया, पंकजो माहो पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेत समूढ़ मना, हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिन की शरणा, जैनों तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मेल साध संगत भाज केवल नाम, श्रंग जाह लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्य हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रख हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्य हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की पदे पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करोहा दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आभाद दे मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबै रिनको आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मार तारिहे, चुन चुन शतर हमारे मारिहे, आप आद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मुहे रखण हारे, साहेब सन सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुमहो पुरी चतरदस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो,
वेदराज ब्रह्मा जू थियो जौन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जौन काल सब जगत बनायो देव दैंद जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सिवकन को सिवगुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पढ़ पढ़ की जाने जाब उदकर्ख करा करता रा प्रजा तरत ताव देहे अपारा जाब आकर्ख करतो हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जानत बेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ तका मूड़ विचारत पेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कृपाहण अनुमानत महामूड़ कच्छ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत नह भेव अब अपनी बुद है जेती वर्णद भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पूपा अंड जेर सेद जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवै बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंप अजुग स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार आसिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणघाता जे अस्थुजे तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार दे है ताकि काल निकट न है है रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताकी ताप तन कमाए हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शवाए सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा कल फांसते ताहे ओबरा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा।

सर्वठोर्म हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सर्वठोर मो हो सहाई दुष्ट दोगते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को हूँ आंख तर नहीं आने।

के गयो तोहारो द्वार बहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छाड़ के गयो तोहारो द्वार।

कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां वाया सहि सीती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे करता तेरे सब किचे है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसा भए नाम जिनके मन वसे आ वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशब तित खैर सपागे खैर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुदवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागी कहे नानक तसक होआ तित खार अन्न हद वाजे आनंद सुनहो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतुरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते बनी कहते पवित्र सतगुर रहा भरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते बनी कहते पवित्र सतगुर रहा भरे

0: होई सतगुर सज्जन मिलेया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास।

जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल होआ, जिन विचों आप गवाया आने दिन गुण गावे नित साचे, गुर के शब्द सोहाया सेवक सेव कर हैं सब तेरी, जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल होआ, जिन विचों आप गवाया आने दिन गुण गावे नित साचे, गुर के शब्द सोहाया मेरे ठाकुर हम बारिक शरण तुम्हारी, एको सच्चा सच तू केवल आप मरारी, रहाओ जागत रहे तिनी प्रभ पाया, शब्दे हमे मारी गिर ही मैं सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत् विचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर रखिया पुर तारी एहो मनुआ दै दिस धाम दा, दूजे पाए खोआया मन मुख मुगद हर नाम न चित्तै, बिरथा जन्म गवाया सतगुर पेटे तानाओ पाए।

हर जन सच्चे साचि कमावहे, गुर के शब्द विचारी, आपे मेल लाए प्रभ साचय, साच रखिया उर तारी, नानक नावहु गत मत पाई, एहा रस हमारी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

बिनु सतगुर सुख कदे न पावे पाई, फिर फिर पछोतावे। हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के केल बेख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पायो उती जो प्यास पियूस पिवन की बंछत सिद्ध को बिद मिलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस

0: शबद हर हर जपै, नाम नव निद अपै, रसन एह निस रसै, सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाइए, गुरमुख है त्याइए, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद धरो, पंच भू बस करो, जन्म कुल उधरो, द्वार हर मानियो। जौत सब सुख इत उत तुम बंछवो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, अगम गुण जान निदान हर मन धरो, पंच भू बस करो, जन्म कुल उधरो, द्वार हर मानियो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, अगम गुण जान निदान हर मन धरो, ध्यान एह निस करो, बचन गुर हृदय धर। फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो, पंच भू संत गुर सिख तरो, नाम सच रंग सर, सदा निर्वैर निरंकार निरपौ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत रिड प्रगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजो, नाम गुर मुख पजो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर।
1: गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाइए, उदत गुर गहर गंभीर, ब्यंत हर नाम नगहीर, मन मिलत लिवलाइए। फुन गुरु परमल सरस, करत कंचन परस, मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर त्याइए। अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस, ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइए। नाम निर्वाण निदान हर उर धरहो, गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाइए। गुरु गुर गुरु जप मन रे, जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक, सुर असुर गण तरहे तेतीस, गुर बचन सुन कन रे। हुन तरह ते संत हित, भगत गुर गुर करहे, तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे। तरहे नारदाद सनकाद हर गुर मुख है, तरहे इक नाम लग तजहो रस अन रे। दास बेनत कह नाम गुरमुख लह, गुरु गुर गुरु जप मन रे। प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबली ना हुट, सतगुर शब्द अथाह अमै धारा रस गुट। मत माता संतोख पिता सर सहज समायो, आ जोनी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो। अबगित अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो, गुर रामदास कल उच्चरै तैं

अहनस सहज सुवाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों हो चटिया तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पात शाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोई है सवना दावे साहो जिस पास बैठिया सोही है